0: इतना दिन चढ़ती कला रखो की महारा।
1: गुरु प्यारी सात संगत जीओ, हुण धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जीआं दी पावन लड़ीवार कथा विचार होवेगी। कथा विचारां नूं सरवण करके अपना जीवन सफला करो जी।

डाव रूट वंगे बबरब वंगे भुजाफर अंगे तेज बरंग लंगुड़िया बांधे आयुध बांधे सैन विमर्दन काल सुरंग अष्टायुध जमके भूखंड धमके अदित जमके फुंक फनंग जय जय होशी मै गासुर मर्दन रंभक बर्दन दैत जिनंग चंडासुर चंडन मुंड विमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंग।

करम प्रणासन चंद प्रकाशन सूर्य प्रतेजन अष्ट भुजे जय जय हो से महासुर मर्दन भरम विनाशन धनम तुझे घुंगुरु गमंगण सहसज मंगण।

सुर नर मुन बंधन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे काव रूप मारे अधम उधारे नरक निवारे आदि कथे किंकणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंहारोहण वितल तले जय जय हो से सब ठौर निवासन बाय बताल आकाशन ले संकटी निवारण नदम उदाहरण तेज प्रकार गण तुंद तपे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती याद नाद अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय होशी सहस्र प्रकार खण आद अनिल गाद अभे चंचला जखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अदम उदारे तूर भुजे दामनी दमंके के हर लंके आद अतंके क्रूर कथे जय जय होशी रक्ता सुर खंडन सुंभ चक्रत निशुंभ मथे बारज विलोजन प्रतन विमोचन सोच विसोजन कौज

आकाशुर्मर्दन चंड चक्रदन आदि गुरंग चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर पिते धूमराज विदुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विदुंसन शुद्ध मते जाल बाजयंते शत्रु मतंते दोष प्रदाहन गाढ़ मते जय जय ओसी मय आकाशुर्मर्दन आदि जुगाद अगाध गते क्षत्रियाण

दामनी प्रकाशे उन्तरनासे ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकर खण सर्वर वर खण दुष्ट प्रतर खण वितल तले अष्टायत वाहन बोलने वाहन संत बनाहन गूढ़ गते जय जय हो सी मासुर मर्दन आद अनाथ अगाध वृते दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रतक्षण।

डुग डुगी दमंगे बाघ बबंगे मुजाफरंगे शुद्ध गते जय जय हो सीमा का सुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारन नरक निवारण पति दो दारण एक बटे पापान विहंडन दुष प्रचंडन खंड अखंड।

करुणा निदान कामल कृपाल दुख दुख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनवंजनाथ जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ। जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय सत्र मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अवचल पार। जानी न जाय जय रूप रेख कहे बास दास कहे कौन भेद कहे नाम तास है कमन जात जय सत्र मित्र नहीं पुत्र प्रात। करुणा निदान कारण स्वरूप जय चक्र चिहन नहीं रंग रूप जय खेद भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल। उर्धंग बिरहा सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुद्धंग अनूप जय रूप रेग नहीं रंग राग अंछिच तेज अनभिजता। जल धन महीप बंधन दुरंत जय नेत नेत निज दिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दोह तहता उतार। कई कोट इंद्र जय पान हार कई कोट रुद्र जगिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जय नेत नेत निज दिन उचरंत। त्व प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल कर नित संत उबार गनी मन गारे पज पशु नग नाग नरादिव सर्व समय सबको प्रतपार है। पोखत है जल मैं थल मैं पल मैं कल के नहीं करम बिचारे दीन दयाल दयानित दोखन देखत है पर देत नहार है। दाहत है दुख दोखन को जल दुजन के पल मैं दल डारे खंडा खंड प्रचंड पहारन पूर्ण प्रेम की प्रीत संभार है। पार न पाए सके पदमापद वेद कते वेद उचारे रोज ही राज बिलोकत राज करो रोहान की रोज नटारा। कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे हंगेव नवेव लख्यो ब्रह्मो ब्रह्माए। वेद पुराण कतेव कुरान हसेव थके कर हाथ नाए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद सुगिन श्री पदमापद पाए।

दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्रीपद मापत ए है। काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है। देह विहीन स्नेह सुबोधन नेह विरक्त अगेह अच्छे है। जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दे है। काहे को डोलत है तुम रे सुत सुंदर श्री पद्मा।

वेद बतावे खोज थके सभी खुजिया सुरहार परे हर हाथ न आवे। नारद से चतुरानंद से रुमनारिक से समूह मिल गायो। वेद कतेव न भेद लखे सब हार परे हर हाथ न आयो। पाए सके नहीं पार उमा पद सिद्ध सनात सनंदन ध्यायो। ध्यान धरो तह को मन में जय को अमितोज सब जग छायो। वेद पुराण कतेव कुरान अभेद निर्वाण सब बचहारे। भेद न पाए सके उन भेद को खेद है अनछेद पुकारे। राग न रूप न रेख न रंग न साग न शोक न संग तिहारे। याद नाथ अगाद बेगद वेख जप्यो तिन ही गुलतारे। तीरथ कोट किए स्नान दिए बहुदान महाव्रत धारे। देश फिर कर बेस बोधन के धरे न मिले हर प्यारे। आसन कोट करे अष्टांग धरे वो न्यास करे मुख कारे। दीन दयाल अकाल बजे बिन अंत को अंत के धाम सिधारे। त्वा प्रसाद कबित अत्र के चलैया चित छत्र के धरैया छत्र धारियों के छलैया महासत्रन के साल है। दान के देवैया महामान के बढ़ैया अवसान के देवैया कटैया जम जाल है। युद्ध के जितैया विरुद्ध

फरा के फिरंगी माने कंधारी कुरे से जाने पच्छम के पच्छमी पछाने ने जका वह मरटा मंगेले तेरी मन सो तपस्या कर दृढ़ वह तिलंगी पहचाने धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आगे में चलत है। रोह के रोहले मांग देश के बंगेले वीर भंग से बुंदेले बाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चिन मचीन के शीशन आवे तिपति दे आए दुख देह के दलत है। जिन्हें तो हृदय तिन्ह वो रण प्रताप पायो सर्वधन दाम फल।

पूरन अवतार निराधार है न पार अवार पाई है न पार वे अपार के बखानी है अद्वै अविनाशी परम पूरन प्रकाशी महारूप हूं के रस है अनासी के मानी है जंत्र हो न जात जा की बाप हो न मायता की पूर्ण प्रभा की सो छटा के अन मानी है तेज हूं को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है के निजंत्र के जानी है तेज हूं कुतार है के राजसी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है कामना की खान है के साधना किसान है विरक्तता के बान है के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूं को रूप है कुमत को प्रहार है दीनन को दाता है गनीमन को गारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है काम को निंदा है के खूबी को देहंदा है गनीमन गरिंदा है के तेज को प्रकाशी है काल हूं के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को भोगत है के वृद्धता की बासी है जो को हूं को जंत्र है के तेज हूं को तंत्र है के मोहनी का मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के

जान को बचैया है, मान को देवैया है, जंजाल को कटैया है, के कामना को कर है, तेज को प्रचंड है, अखंडन को खंड है, महीपन को मंड है, के श्री है नर है, विश्व को वरण है, के आपदा को हरण है, के सुख को करण है, के तेज को प्रकाश है, पाई है न पार पार वार हूं को पार, जगो की जत विचार सो विचार को निवास है, हिंगुला हिमालय गा वह बसी हल विद्या वह पूर्व न पार पाव सत या नास है, देवन को देव महादेव हुंग देव है, निरंजन अभेवनाद अद्वय अभिनाशी है, हंजन विहीन है निरंजन।

राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ वो जोग है धरैया ध्रुव मचाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के चीर कैसे छीरावत छास कैसी छतरा नेर छपा कर कैसे छप काल इंद्र के कूल के हंसनी से सिहारो महिरा से हुसैन बाद गंगा के सिधार चली सातो सिंध रूल के पारसी पलाव गढ़ रूपा के सी रामपुर सूरा सी सुरंगाबाद निके रही झूल के चंपा सी चंदेरी गोट चांदनी सी चांदा गढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसी पूर सी ससी सुरंगाबाद निके सोहियत है हिमा सी हिमालय हर हार सी हलबा नेर हंस कैसे हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चांद्र गिर चांदनी सी चांदा गढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंगधार बकान सी बिलंदवाद गिरत तिहारी के उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी इसके दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गायत है भकरी गंधारी गोरे कखरी गिरदे जाचारी बौन के आहारी तेरो नाम जायत है पूरब पलाऊ काम रूप कमाऊ सर्व ठोर में विराज जहाँ जहाँ जाइयत है पूर्ण प्रतापी चंद्र मंत्र देता बिना।

काहे रे मंचत वह उदम जा आहर हर जियो परया सैल पथर मह जंत उपाय ताका रजक आगे कर धरिया मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाओ जन पिता लोक सुत बंता कोय न किसकी धरिया सिर सिर रजक संबाही ठाकुर काहे मन भाव करिया ऊडे ऊड आवे सैको सा तिस पाछे बछरे छरिया तिन कवन खलावे कवन चुगावे मन मह सिमरन करिया

भई परापत मानख देहुरिया गोबिंद मिलन की इह तेरी बरिया अवर काज तेरै कतै नकाम मल साध संगत भज केवल नाम शरण जाम लाग भव जल तरन कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहा।

न होए चित की इच्छा, ताउ चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सभय तुम घावो, आप हाथ दय मोहे बचावो, सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सभय कर तारा, मोर अच्छा निज कर दय करिए, सब बैरन को आज संगरिए, पूर्ण होए हमारी आशा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना ध्याऊं, जो बर चाऊं सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख हमारी तारी है, चुन चुन सत्र हमारी मारी है, आप हाथ दय मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, हूजो सदा हमारे पच्छा, श्री असधुज ज्यो करियहु रच्छा, राख लेहो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे, दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दस कंता, काल पाए ब्रह्मा पप धरा, काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर बिशन प्रगासा, सकल काल का किया तमासा।

करता है हमारा। जम काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो, आद अंत एक है अवतार, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी, सिवकण को शिव गुण सुख दियो, सत्रण को पल मोह पद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, छींटी ते कुंचर यस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी, एक एक की पीर पछाने, घड़ घड़ के पट पट की जाने।

धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप आपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत नरालम जानत भेद भेद अर आलम। नरंकार निर्भकार निर्लंभ आद अनिल अनाद असंभ। तक

का छीनत नह भव आप आपनी बद है जेती बरंत भिन्न भिन्न तोहे तेती तुमरा लखान जाए पसारा केह बिद सजा

चौपाई सम सत्रह सहस भणी जय अर्ध सहस फुन तीन कहे जय भादव सुदी अष्टमी रवार तीर सत द्रव ग्रंथ।

बचन बिचार चौपई मन अग्न स प्रथम मनाऊ किशन बिशन कबहु न ध्याऊ कान सुन पहचान नतन सौ लव लागी मोरी पग।

राम कथा जुग जुग अटल सब कोई भक्त नेत स्वर्ग बास रघुबर करा सगरी पुरी समेत चौपई जो

दरबार में तुर दरबारा सत्यम शंकरा लक्ष्मी कणी प्रिय दरबारा सर्व देवते नमस्कारा तोरा नान गुरु गोविंद सिंह जी पुरम गुरु अवतार जग में गोदी राज रही श्री अब्दुल गप्पा सचखंड के दरबार।